आज तत्व का बना पिंजुड़ा पिंजुड़े में मैना पांच लुटेरे घात लगाए घबराए मैना बजा ले अनहद शून्य के सन्नाटे में धड़कन की तिरता।